0: Transforming lives. Today in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through projects such as Dholera Special Investment Region.
1: Most industrial towns grow first and get wired later. Dholera is Prime Minister Narendra Modi's bold new vision, a brand new smart city on the Gulf of Khambat where roads, water, power and internet are built before a single plot is sold. India's first semiconductor fabrication factory is also coming up right here in this space. Sharing his pride in Dholera's rapid growth as a modern manufacturing hub, Prime Minister Narendra Modi said,
2: "Hame Dholera Special Investment Region par bhi bahut garv hai. Aaj ye shahar मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
1: Elaborating on the scale of smart city and its rapidly